बेबी मुझको पता है तेरा मन है बड़ा, तभी फ्लोर पे तेरी वेट में हूँ खड़ा। ऐसे बैठे बैठे तू शोल्डर ना हिला, थोड़ा पैर उठा सानू नच के वखा।